क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा, तू जा बस।

0: बचा लिया, सबको बचा लेते हैं।
1: हेलो ऑल, दिस इज अजय देवगन। लिसन टू माई लेटेस्ट ट्रैक दिल है भोला फ्रॉम माई लेटेस्ट फिल्म भोला, ओनली ऑन सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल नाउ।